सुप्रभात, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी मनाली का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 और 31 सेकंड हो रहे हैं। आज का दिन है रविवार, सख संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की जून माह की 21 तारीख है। और इसी के साथ ही मैं आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारे आज के इस पहली सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आए दिन की शुरुआत करते हैं समाचार के साथ, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है।

0: परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के इस पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 6:10 पर हम आनंद लेंगे कार्यक्रम भक्ति गीतों का। 6:30 पर वुमेन्स प्रोग्राम में सुनेंगे प्रस्तुतकर्ता तृष्णा चक्रवर्ती द्वारा अतिथि ललनी रोपोई रांगचल द्वारा बातचीत, जिसका विषय रहेगा ए कन्वर्सेशन ऑन लाइफ लर्निंग एंड टीचिंग। 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। इसके पश्चात जानेंगे आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। समय रहेगा 7:05। 7:30 पर हम सुनेंगे इंटरनेशनल योगा डे पर एक खास कार्यक्रम, जिसके अतिथि रहेंगे रोमन कैम्प्राई, योगा इंस्ट्रक्टर, और प्रस्तुतकर्ता रहेंगी अंकिता पॉल।

8 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत और नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ का समय रहेगा 8:30। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। 8:40 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पूर आंचलिक बातोरी। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के तहत 9:15 पर खेलमा कार्यक्रम में हम सुनेंगे जॉन एलिजर लुंगो और उनके साथियों के गाए कुछ खेलमा भक्ति गीत। 9:25 पर रांगखोल कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ रांगखोल भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे ललचोई सेक रांगखोल और उनके साथी। जयंतिया कार्यक्रम में हम सुनेंगे मलाम भलांग प्रिंगे और उनके साथियों के गाए कुछ जयंतिया भक्ति गीत। समय रहेगा 9:35 और 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ ब्याते आधुनिक गीत एलआर कैस्परा नामपुई और उनके साथियों की आवाज़ों में।

10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे मिड डे न्यूज। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक एक बार फिर हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और इसी बीच हर घंटे सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, ये थी हमारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब आरंभ करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रमों को और आनंद लेते हैं कुछ भजनों का।

श्रोताओं, इस भजन के साथ ही हम समाप्त करते हैं आज के लिए भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब समय हो चला है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम सुनने का, और आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे प्रस्तुतकर्ता तृष्णा चक्रवर्ती द्वारा अतिथि ललनी रोपुई रांगचल से बातचीत, जिसका विषय रहेगा ए कन्वर्सेशन ऑन लाइफ लर्निंग एंड टीचिंग।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी के हैं। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम विभाषती चक्रवर्ती है। मैं कॉन्वेंट हाई स्कूल काशीपुर की टीचर हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ नए आइडियाज़ शेयर करना बहुत पसंद है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल और हार्डवर्किंग पर्सन हूँ। मैं लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बिलीव कर टीचिंग के साथ साथ मुझे रीडिंग और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। मैं मानती हूँ कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और अच्छे वैल्यूज भी देती है। उसके साथ साथ मैं एक अच्छी माँ भी हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद।
0: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित है असम राइफल्स प्राइमरी स्कूल की असिस्टेंट टीचर लालनी रोपुई रंगचल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
2: धन्यवाद
0: जी, आप अपने बारे में बताइए।
2: मेरा नाम लालनी रोपुई रंगचल है और मैं मोलहई गांव की रहने वाली यही हाफलोंग की हूँ।
0: जी
2: और मैं 2 सालों से असम राइफल्स प्राइमरी स्कूल में काम कर रही हूँ।
0: जी जैसे आपने बताया कि 2 सालों से आप असम राइफल्स प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं, तो उससे पहले भी आपने दूसरे स्कूल में काम किया है?
2: हाँ, मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन 2009 से शुरू किया है।
0: जी
2: एक छोटा सा स्कूल है मोलहई में,
0: LRZ
2: एकेडमी, उसी में मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने सिलचर में, मतलब हाफलोंग से बाहर सिलचर में मैंने काम किया है 1-2 साल के लिए। उसके बाद ही मैंने यहाँ असम राइफल्स में काम किया है।
0: जी क्या पहले से ही आपका इंटरेस्ट था टीचिंग में या आफ्टर अ टाइम आपने स्टार्ट किया है जॉब?
2: टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी.
2: मतलब जब मैं क्लास 5 पढ़ रही थी, मुझे अभी तक याद है, मम्मी को भी ये बात याद है कि मैं हमेशा बोलती थी कि मैं क्लास 5 पढ़ के उसके बाद टीचर बन जाऊंगी।
0: जी
2: क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं स्कूल जाती थी तो हमेशा मैं टीचर के, मतलब मिमिक करती थी, मतलब जैसे वो लोग पढ़ाते थे, कैसे किताब को हैंडल करते थे, वो सब मैं घर में वो वापस करती थी।
0: तो जी जैसे आपने बताया कि आप कितने इंटरेस्टेड थी हर चीज में,
2: हाँ।
0: तो कैसा चल रहा है आपकी टीचिंग की जिंदगी या कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका?
2: असम राइफल्स के स्कूल में काम करने के बाद मुझे और भी इंटरेस्ट हो रहा है टीचिंग में, क्योंकि उधर CBSE कोर्स,
0: जी
2: मतलब
0: जी
2: पहले तो मैं सेवा बोर्ड में, मतलब उसके अंदर ही काम कर रही थी। लेकिन जब CBSE के बच्चे को हम, मतलब बुक्स देखने के बाद ही एवरीथिंग चेंज्ड, मतलब पूरा बोर्ड बदल गया, मतलब पढ़ाने का तरीका सब कुछ।
0: जी
2: जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड वाला टीचिंग आ गया है इसमें। तो पहले क्या होता था कि उसमें हम वो सब चीज़ नहीं करते थे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करके बोर्ड में नोट्स दो, खत्म, बाय हार्ट कर लो उसको, ऐसा ही।
0: जी
2: तो अभी जैसे कि एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, मतलब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट फीलिंग आ रहा है और मुझे आगे जाके ये मुझे और भी सीखना है।
0: जी बिल्कुल, ये एक्टिविटी बेस्ड जो पढ़ाई है अभी का, वो आपको कैसा लगता है?
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा। वो स्मार्ट क्लास यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल टूल्स, मतलब बच्चों को पढ़ा भी रहा है और साथ ही साथ खेल भी रहा है वो लोग।
0: बिल्कुल,
2: तो मुझे ये सब चीज़ देख के, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली मैं भी एक शादीशुदा हूँ, तो मेरे बच्चों के लिए भी मैं ये सीख रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: जी जी जैसे आपने बताया कि किस तरीके से डिजिटल टूल्स को यूज़ किया जा रहा है, जी टेक्नोलॉजी कितना हेल्प कर रहा है इन चीज़ों में?
2: टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बच्चों को हेल्प कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हो गया ये स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास में बच्चों को, मतलब दिखाई भी दे रहा है और उनसे समझ में भी आ रहा है। और रही बात एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जैसे कि ईवीएस का सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मैं अभी तक मैथ्स पढ़ा रही थी,
0: जी
2: लेकिन सडनली मेरा चेंज हो गया है, सब्जेक्ट चेंज हो गया जो कि ईवीएस में है। तो ईवीएस में, मतलब बच्चों को पढ़ाना मुझे भी बहुत मुश्किल फील हो रहा था। तो मैंने क्या किया, गूगल सर्च किया, रील्स देखे और उससे काफी हद तक मुझे हेल्प मिली। और मैंने क्या किया, बच्चों को बाहर लेके गया, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में अगर उनको कुछ एक्सप्लेनेशन करना है, सिर्फ बोल के या एक्सप्लेन करके या रिटेन करके ऐसा नहीं है, तो मैंने उन लोगों को बाहर निकाला, नेचर को फील करवाया, तभी जाके उन लोगों को मतलब समझने में आसान लगा।
0: जी, ये तो काफ़ी इंजॉयबल लर्निंग और हाँ, साथ में एक्सपेरिमेंटल जैसे बताया है आपने, अंडरस्टैंडिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है।
2: हाँ हाँ
0: जी
2: बच्चे बहुत मतलब आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, मतलब वो लोग कैच कर पा रहा है
0: बिल्कुल,
2: एवरी मूवमेंट, एवरी एक्टिविटी, जहाँ वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो लोग पकड़ पाते हैं, मतलब इजीली पकड़ लेते हैं।
0: जी, जैसे आपने और एक बात बताई कि ये सब आप जब खुद पढ़ाती हैं, आप अपने
2: हाँ
0: बच्चों के लिए भी सोचती हैं।
2: हाँ
0: जी, आप शादीशुदा है, स्कूल भी वो करती हैं, तो सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं?
2: देखिए, मैनेज करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ एक टाइम टेबल सेट करना पड़ता है, और अगर दिल में अगर कुछ चीज़ का इतना लगन हो
0: जी
2: तो मैनेज करना बहुत इजी होता है, लेकिन उसके लिए आपको आपके दिल में एक गोल रखना है कि हाँ मुझे करना है, मतलब ठान के रखना है,
0: जी
2: तभी
0: जी
2: टाइम मैनेज हो पाएगा।
0: जी बिल्कुल, ये तो है। और आपने बताया जैसे कि आप टाइम मैनेज किस तरीके से करती हैं, आपके दोनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं और
2: हाँ
0: सब कुछ
2: हाँ
0: भी आप मैनेज करती हैं, उसके अलावा आप टीचिंग में तो आपका इंटरेस्ट है ही, तो
2: हाँ
0: उसके अलावा आपकी हॉबी क्या है?
2: मेरी तो कोई ऐसी हॉबी तो नहीं है पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी तो पापा मुझे हमेशा कहते थे कि तू ऑलराउंडर बनना सीखो।
0: जी
2: मैं कुछ चीज़ में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब पर्टिकुलरली एक फील्ड में मैं एक्सपर्ट कहीं में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ करना आता है थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि कुकिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, वीविंग हो गया, जो
0: जी जी
2: बनाते हैं ना ऊल से, मतलब निटिंग भी हो गया, जो भी हो, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे आता है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें ज़्यादा हॉबी है, लेकिन हाँ पहले जब मैं अपनी टीनेज लाइफ में थी तो मुझे फुटबॉल खेलना एक टाइम के लिए बहुत पसंद लगती
0: जी
2: थी।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और बिल्कुल ऑलराउंडर ही है।

0: आप जैसे
1: यू.
0: फुटबॉल की बात कही है आपने, क्या आप खेलती थी रोजाना या आफ्टर टाइम आपने बंद कर दिया था?
1: नहीं, मैंने क्लास 9 एंड 10 जब मैं पढ़ रही थी तो उसी टाइम में मैंने फुटबॉल खेली थी, और हमने एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था एक्वामेराइन.
0: जी
1: तो हम लोग इधर उधर जाते थे, एक फील्ड से दूसरे फील्ड, मतलब 10 रुपया का वो बाजी बोलते हैं ना, बैट
0: जी जी जी
1: लगाते हैं हम
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: 10 रुपया
0: बिल्कुल.
1: का, 5 रुपया का, क्यों उस समय तो पैसे का इतना मूल्य नहीं था. तो ऐसा ही करके हम लोग खेलते थे, लेकिन 10 पास करने के बाद तो वो पैशन चला गया.
0: जी, जिम्मेदारी आ जाती है तो चीज़ें भी
1: हाँ,
0: बदल जाती
1: सही
0: हैं.
1: बात.
0: जी, आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है, टीचिंग फील्ड में आप है भी, तो
1: हाँ,
0: आप आगे का क्या सोचती हैं?
1: आगे तो मैंने इतना मतलब नहीं सोचा है, लेकिन फिर भी मैं लर्निंग स्टॉप करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है,
0: जी बिल्कुल.
1: वैसे ही मैं भी जितना हद तक मेरा दिमाग, मेरा शरीर और मेरा विल काम कर रहा है, उतना टाइम तक ही मैं पढ़ाई करना चाहूँगी, और दूसरों को भी पढ़ाई करने के लिए मैं मोटिवेट करूँगी अगर हो सके तो.
0: जी बिल्कुल, जैसे हमारा ये वुमेन प्रोग्राम है और आप खुद एक वुमेन हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं, वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है?
1: वुमेन की बहुत सारी नीड्स होती है,
0: जी
1: स्पेशली
0: बिल्कुल.
1: अगर उसके बच्चे हो तो. कभी कभी ये हो जाता है कि हस्बैंड बाहर है, जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड इधर नहीं रहते हैं, वो सिलचर में रहते हैं, तो क्या होता है कि मुझे बच्चों को संभालने में बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है. फाइनेंशियली तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें भी है, स्कूल की तरफ से भी है, घर में भी है,
0: जी
1: और कभी कभी बच्चों को खुश भी करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ों के लिए भी कभी कभी वुमेन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है.
0: जी बिल्कुल. जी, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड सिलचर रहते हैं और आप यहाँ पे अकेली रहती हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहता होगा आपके लिए भी, क्योंकि आना जाना ये सब भी रहता ही होगा आपका.
1: जी.
0: जी, जैसे आपकी ज़िंदगी में भी सपोर्ट सिस्टम तो कोई तो होगा ही. जी, वुमेन के लिए कोई भी काम में सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है?
1: स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो बहुत सपोर्ट का ज़रूरत. अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते हैं तो मेन फोकस आता है फैमिली पे. मतलब फैमिली अगर कुछ चीज़ में, जैसे कि बच्चों को संभालना हो या डेली नीड्स को पूरा करना, अगर उसमें फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. और स्पेशली हम वुमेन ऐसा है कि हमारा दुख हम किसी को जाके ऐसा शेयर नहीं कर सकते, हम खुद ही दिल में ऐसा ही दबा के रखते हैं, और उससे ही मतलब दिल में बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, और उससे क्या होता है कि रिलेशनशिप भी खराब हो सकता
0: जी
1: है.
0: जी बिल्कुल जी. और ऐसा है कि आपके जो स्कूल के वेकेशन होते हैं, तो उस टाइम में वेकेशन में आप थोड़ा रेस्ट कर पाती हैं शायद?
1: नहीं,
0: जी
1: वेकेशन के समय मतलब मेरे काम करने, जैसे ही हमको छुट्टी मिलता है मेरा तो काम शुरू हो जाता है,
0: जी
1: क्योंकि जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं, वेकेशन के समय ही एक सीज़न आता है, वो
0: जी
1: सिनार फ्रूट का सीज़न आता है, तो उसमें उसको हार्वेस्ट करने के लिए हम सब चला जाता है सिलचर, क्योंकि हस्बैंड को भी थोड़ा हेल्प मिल जाता है, और उधर ही जाके हम उसको प्लक करके मतलब बेचते हैं.
0: जी, तो इसमें तो काफ़ी मेहनत लगती
1: बहुत
0: होगी.
1: मेहनत है, और ऊपर से सिलचार बहुत गर्म है, तो गर्मी के मौसम में सिनार को बेचना मतलब खुद को आग में जलाना जैसा है.
0: जी बिल्कुल. जी, जैसे आपने बताया कि इस दिन जो फ्रूट है आप लोग वो करते हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: तो ये कितने टाइम में हार्वेस्ट होता है?
1: हमने मई, अप्रैल और मई महीने के बीच में बीज को लगाया था, और अभी जैसे कि पूरे 1 महीने के लिए वो सिनर फल देते रहेंगे.
0: जी.
1: मतलब आज आपने अगर 50 सिनार तोड़े हैं तो उसके नेक्स्ट दिन उसका डबल हो जाएगा, वो मतलब 100 तोड़ने के लायक आ जाएंगे रात भर में ही.
0: जी, ये कितने टाइम से आप लोग ये फ्रूट को आप लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं?
1: हम लोग करीब 6-7 सालों से कर रहे हैं.
0: तो उसका मंथली जिसे सीजन रहता है, उसका कोई
1: हाँ,
0: सीजन है?
1: वैसे ये गर्मियों के मौसम में ही है, जैसे कि जून जुलाई महीने में ही मिलते हैं.
0: जी. तो उससे पहले आपने कोई और फ्रूट या कोई और सब्जी ट्राई किया, या सिर्फ सीनरी आपने ट्राई किया है?
1: हमने अभी तक तो सिर्फ सिनार ही ट्राई किया है.
0: तो आपको भी

0: सारे सेक्रीफाइसेस भी रहते
1: हाँ
0: हैं लाइफ में, तो कैसा रहता है?
1: सबसे पहले तो ऊपर वाला की कृपा से है, क्योंकि अगर आपको अगर कुछ करना है तो सबसे पहले हेल्प करेगा गॉड, तो मैं उसमें बहुत विश्वास करती हूँ। तो जो भी चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको भगवान के पास हम ऑफर करते हैं।
0: जी
1: जैसे कि मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को जैसे ही स्कूल पहुँचे वो लोग प्रे मतलब प्रे करने के लिए भगवान को, पूरा दिन भगवान हमारे साथ बैठने के लिए, ईच एंड एवरी स्टेप भगवान हमारे साथ चले, उसके लिए हम बोलते हैं।
0: जी
1: तो इसी से ही हमको करेज मिलता है।
0: जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा ही करना चाहिए। जी आज के टाइम में सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प करता है वुमेन को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो वुमेन को बहुत सारा इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, और अवेयरनेस जो बना रहा है कई भी साइड से, मतलब वुमेन को बहुत एम्पावर करता है और मोटिवेट भी करता है कि खुद से कोई एक कदम उठाने के लिए जिससे
0: बिल्कुल
1: बहुत प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, बहुत बहुत अच्छा है वो चीज़। और आगे भी मैं सभी को कहना चाहूँगी कि इसमें वो लोग थोड़ा वर्कआउट करें।
0: जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी अच्छी बात कही है आपने जी। जिससे आपने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे पन्ने ही हमारे साथ शेयर किया है, मैं चाहूँगी कि आप अपने कोई मेमोरेबल मोमेंट को भी शेयर करें।
1: एक मेमोरेबल तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन क्लास 6 में थी तो मुझे एक टीचर ने चाटा मारा था, वो अभी तक मुझे याद है
0: जी
1: जो कि मैंने गलती किया ही नहीं, फिर भी मुझे वो जहाँ चाटा पड़ा, तो वो चीज़ मैं अभी तक नहीं भूली हूँ।
0: बहुत ही बैड मेमोरी
1: हाँ बैड
0: है ये
1: मेमोरी है ये।
0: जी। और कोई अच्छी मेमोरी भी बता दीजिए, बैड तो बताया ही आपने।
1: अच्छी मेमोरी, मेरे मेरे एक टीचर थे, वो क्लास 9 की हमारी क्लास टीचर थी, वो बहुत अच्छी थी। मतलब उसका नेचर इतना शांत था, मतलब वो हमेशा जैसे कि ये नहीं बोलती कि जो वीक स्टूडेंट है, कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि एक वीक स्टूडेंट को जाके वो पोक करता है कि तू इतना लेजी है, तू तूने फेल कर दिया तो आगे जाके भी फेल होगा, ऐसा बोलते हैं बाकी सारे टीचर्स, कोई कोई टीचर्स ऐसा होते हैं। लेकिन वो एक टीचर था, वो बहुत अच्छी थी, उसने कभी ऐसा डिमोटिवेशन वाला वर्ड ही यूज़ नहीं किया, वो हमेशा कहती थी यू कैन डू इट बेटर।
0: जी
1: तो एक दिन क्या हुआ, मुझे हमेशा मैथ्स में लड्डू मिलते थे,
0: जी
1: तो वो उसने फाइनल रिजल्ट जब आया हमारा तो मैम ने बुलाया मुझे और मैंने उसको दिखाई मेरे रिपोर्ट कार्ड, तो उसने देखा कि मैथ्स में तो तुम्हें अंडा मिला है। तो मैंने बोला कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम होता है समझने के लिए, तो बाद में उसने बोला कि मैम ने बोला कि कोई बात नहीं अगली बार ट्राई करो, अगली बार हो जाएगा। तो वो मोटिवेशन हर एक स्टूडेंट को ज़रूरत है।
0: जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात है, जैसे आप प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट रहता है या इजी रहता है?
1: प्राइमरी स्टूडेंट्स तो बच्चे मतलब 3 साल से लेके 12-13 साल के बच्चे हैं जो बहुत चंचल और शरारती है, लेकिन चंचल है शरारती है इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ उठा दो, तो उनको बहुत स्मूथली हैंडल करना पड़ता है, बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे डिफरेंट इमोशंस के हैं,
0: जी
1: और कभी कभी हमको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस अगर नहीं है तो हमारे कभी कभी हाथ भी उठ सकते हैं इसीलिए, और हाथ उठाना तो अगेंस्ट द लॉ है आज के NEP के थ्रू।
0: जी जी
1: तो हमें बहुत सावधान से मतलब बच्चों को समझना चाहिए उनका क्या तकलीफ है, कौन सा चीज़ में वो लैकआउट कर रहा है, वो सब चीज़ को जानना और पहचानना ही एक टीचर का काम है, और उसको आगे कैसा लेके जाए वो ही मतलब बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है टीचर के लिए, इसलिए हम बहुत सारे रिस्क भी उठाते हैं।
0: जी जिसे आपने बिल्कुल सही कहा है। आप अभी प्राइमरी स्टूडेंट्स और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में तो काफ़ी डिफरेंट रहता है, और उसमें भी ऐसा है कि हैंडलिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो इतने बच्चों को हैंडल करते हुए, और फिर आप अपने घर के बच्चों में, आप कैसी लाइक एज ए टीचर आप कौन सा नेचर रखती हैं?
1: पूरा दिन सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 2 बजे तक स्कूल

0: में रह के पूरे क्लास को संभाल के 100 से 200 बच्चों को संभालने के बाद जब मैं घर आती हूँ तो एग्जॉस्टेड फील हो जाता है मुझे, मतलब कुछ करने का मन नहीं। लेकिन क्या होता है कि हमारे ऊपर भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाना पड़ता है, तो कभी कभी मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ फिर भी नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी कॉलेज लाइफ में आपने कोई चैलेंज या कुछ फेस किया है?
0: कॉलेज लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि उस समय मेरे फैमिली के बहुत इश्यूज थे, तो कभी कभी मुझे सैटरडे को हमारा इधर मतलब हफलों का जो मेन मार्केट डे होता है वो सैटरडे को है,
1: जी
0: तो कभी कभी मुझे मम्मी की हेल्प करने के लिए मुझे बाज़ार भी बैठना पड़ता है सब्जी बेचने के लिए। तो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरे कॉलेज के टीचर आ गए, मुझे इतना शर्मिंदगी, उस टाइम होता है टीनेज लाइफ है ना उस समय, तो थोड़ा शर्म भी फील आता है मुझे, तो मैम को देखने के बाद तो मैं अपना सिर ही उठा नहीं पाई।
1: जी अब आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगी?
0: अब तो जब भी मैं वो मोमेंट सोचती हूँ तो मैं खुद को ये बोलती हूँ कि मैंने क्यों अपना मुंह छुपाया, क्योंकि काम करने में कोई शर्म नहीं है, शर्म करने का कुछ बात ही नहीं है। अभी वो मुझे फील हो रहा है, अगर मोमेंट अगर वापस आ जाए तो मैं वो कभी नहीं दोहराऊंगी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा
0: हाँ,
1: नहीं
0: छोटा
1: होता
0: या
1: है,
0: बड़ा नहीं होता है
1: और आपने तो हेल्प ही किया था,
0: जी।
1: वो काफ़ी अच्छी बात है। जी कार्यक्रम के अंत तक हम आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी श्रोता हैं आज आपको सुन रहे हैं, सबके लिए आपकी ओर से एक मैसेज दीजिए।
0: हम पढ़ाई करते हैं लेकिन सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब या नौकरी करने के लिए नहीं, लेकिन मैं सब युवाओं को ये बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई एक बात है, लेकिन उससे हमको क्या मिलती है। वी लर्न नॉट ओनली टू अचीव अ गवर्नमेंट जॉब, वी कैन ऑल्सो चेंज वंस पर्सनैलिटी, खुद को बदलने में हमको एजुकेशन काफ़ी हद तक हमको हेल्प करता है। इसलिए हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको खुद को बदलाव लाने के लिए भी करेंगे, और मेहनत से थ्रू परसिवरेंस और नहीं डर के हम आगे बढ़े, और अपनी गलती गलत करने से कभी ना डरे, क्योंकि हम गलती से ही सीखते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: थैंक यू।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
0: थैंक यू।
1: जी आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

दोस्तों, विमेन प्रोग्राम में आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता तृष्णा चक्रवर्ती द्वारा अतिथि ललनिरोपुई रांगचल से बातचीत, जिसका विषय था ए कन्वर्सेशन ऑन लाइफ, लर्निंग एंड टीचिंग। चलिए अब हम सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गाने। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री संबोधन
2: सुखिनः सर्वे संतो निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: That was the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honorable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
3: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
4: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
5: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था नियासुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए,
4: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
3: And the Honorable Prime Minister has just arrived and he will be going to the designated area and he has just arrived.
0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों चलिए अब हम सुनते हैं हमारा आज का पोएम ऑफ द डे।
6: गुड मॉर्निंग, आई एम काव्या शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोएम बाय फ्लेचर कार्नी नेम्ड लिटिल डिट्स। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड Make the mighty ocean and the pleasant land, little deeds of kindness, little words of love, helps to make art happy, like the heaven above and the little moments, humble though they be. Thank you.
0: श्रोताओं, इस पोएम ऑफ द डे के साथ हम सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज का दिन। हर दिन की तरह आज 21 जून का दिन भी इतिहास के पन्नों में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और यादगार पलों से समेटे हुए। तो चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्होंने देश और दुनिया की दिशा को प्रभावित किया है।

सन 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। सी राजागोपालाचारी सन 1948 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। आज ही के दिन सन 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज टीम ने 1975 में पहला वर्ल्ड कप जीतने का गौरव हासिल किया था। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में भारत के नौवें प्रधानमंत्री बने थे। सन 2009 में आज ही के दिन भारत की बैडमिंटन स्टार सानिया नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

अब जानते हैं कुछ महान व्यक्तित्व के नाम जिनका जन्म या निधन इस तारीख को हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का जन्म वर्ष 1912 को हुआ था। सन 1927 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित एक वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीस का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षसा का जन्म आज ही के दिन साल 1933 में हुआ था। सन 1953 में दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनने वाली बेनजीर भुट्टो का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं क्रांतिकारी केशव बलिराम हेगवर का निधन हुआ था। इटली का राजनयिक एवं राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार निकोलो मैचिवेली का निधन वर्ष 1587 में हुआ था।

श्रोताओं, चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और वर्ष 2015 में पहली बार इसे वैश्विक स्तर पर मनाया गया। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धन है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापन करने का एक प्रभावी माध्यम है। नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला और सशक्त बनता है, तनाव और चिंता कम होती है तथा एकाग्रता और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। प्राणायाम और ध्यान जैसी योग पद्धतियाँ हमें सकारात्मक सोच विकसित करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। ये हमें स्वयं से जुड़ने, भीतर की शांति खोजने और स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकालने और स्वस्थ, संतुलित तथा प्रसन्न जीवन का संकल्प लें।

श्रोताओं, अब हम इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉल्स्टिस के बारे में जानेंगे। ये दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस दिवस को मान्यता प्रदान की ताकि विभिन्न संस्कृतियों में आयान के महत्व और प्रकृति के साथ मानव के संबंध को सम्मान दिया जा सके। आयनंथ, जिसे अंग्रेजी में सॉल्स्टिस कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को ग्रीष्म आयनंथ होता है, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात लेकर आता है। ये सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के उत्सव का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के अनेक देशों और समुदायों में इस दिन को विशेष पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। ये दिवस हमें प्रकृति के चक्र, ऋतु परिवर्तन और पृथ्वी पर जीवन के संतुलन की याद दिलाता है। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश भी देता है। इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक स्वच्छ, हरित तथा संतुलित पर्यावरण के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लें।

श्रोताओं, इस जानकारी के साथ ही हम समाप्त करते हैं आज के दिन से जुड़े ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब हम सुनते हैं कुछ बेहतरीन फिल्मी गाने।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गाने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम के और इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे प्रस्तुतकर्ता अंकिता पॉल द्वारा अतिथि रोमन कैम्प्राई योगा इंस्ट्रक्टर से इंटरनेशनल योगा डे पर यह कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, हर साल 21 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाती है। योगा सिर्फ एक व्यायाम या फिटनेस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करती है। आज के तेजी से बदलते युग में हम सब अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। कभी तनाव, कभी नींद की कमी, कभी काम का दबाव, तो कभी लाइफस्टाइल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं। ऐसे में योगा एक ऐसा साथी बनकर उभरता है जो न केवल हमें तंदुरुस्त रखता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम हमें याद दिलाता है कि बढ़ती उम्र सिर्फ सालों की गिनती नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सक्रिय और खुशहाल जीवन जीने का एक अवसर भी है और योगा इस यात्रा को और भी सुगम और सुखद बना सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक अनुभवी योगा इंस्ट्रक्टर श्री रोमन कैम्प्राई जी, जो हमें बताएंगे कि योगा किस तरह हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे शामिल करके बेहतर स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे।
1: धन्यवाद, नमस्ते।
0: तो सर, मैं चाहूंगी कि आप जरा अपने बारे में थोड़ा विस्तार में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन और प्यार भरे नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं हूँ रोमन कैम्प्राई। 2015 को मैंने योग गुरुकुल आसाम द्वारा योग प्रशिक्षित डिप्लोमा कोर्स लिए थे। उसके बाद हमने दिमाग के बहुत सारे क्षेत्र में योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को सिखाया भी है, अपना जो ज्ञान मिला लोगों से भी बातें। और 2015 से लगभग 2019 तक हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा दिमाग में हरंगजाऊ जगह पे मुझे नियुक्ति किया। उसके बाद हमने वहाँ लगभग 4 वर्ष तक योगा को लोगों को सवेरे शाम, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, इस प्रकार का योग लोगों को सिखाया। और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ हुए। किसी का डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, या किसी ओबिसिटी का प्रॉब्लम था, या फिर किसी का दिल का मरीज हो, इन सबको हमने योग कराने से बहुत सारे लाभ हुए।
0: जी सर, तो हमें अच्छा लगा है आपका जो एक्सपीरियंस है सुन के, आपने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया है। सर, अभी मैं हमारे कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहूँगी कि जैसे हमारे इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम रखा गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो आप कई वर्षों से योगा से जुड़े हुए हैं। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि स्वास्थ्य और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योगा कितना महत्वपूर्ण है।
1: मेरे अनुसार शरीर को निरोग रखना है
0: जी, जी,
1: और शरीर को ठीक ठाक रखनी है, हस्त पुष्ट रखनी है। योगा बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसे शरीर में अपना जो रक्त संचालन है, जो ब्लड सर्कुलेशन इत्यादि, उसके बाद जो शरीर में जो चिड़चिड़ापन है इत्यादि को यदि हम ठीक ठाक रखनी है तो हमें योगा बहुत ही जरूरी है। और आयुर्वेदिक के अनुसार वात, पीत, कफ आदि का संतुलन बनाए रखना है तो योगा से ही संभव होती है।
0: जी सर, ये थीम से जुड़ा हुआ आपने जो एक्सप्लेनेशन हमें दिया है वो बहुत अच्छा लगा। सर, अभी हमारे जो आजकल के लोग जो लंबी जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन सेहतमंद जिंदगी जीना एक चुनौती बन गया है अभी के
1: जी,
0: लिए
1: जी, जी, बिल्कुल।
0: तो योगा इस स्थिति को कैसे बदल सकता है।
1: जी जी, वैसे आजकल लोग लंबी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम उसे सेहतमंद जिंदगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोग दवाई के सहारे लंबी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनको मानसिक बहुत ही कष्टदायक होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: उसको सेहतमंद जिंदगी नहीं कहा जा सकता। और सेहतमंद जिंदगी के लिए जैसे हम योग प्राणायाम के माध्यम से अनुलोम विलोम इत्यादि करती हैं, विषैला जो पदार्थ है, टॉक्सिक जो वायु है, वो श्वास प्रश्वास के द्वारा बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो अच्छा जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में प्रवेश होती हैं, जिससे शरीर को जैसे बहुत स्वस्थ ऐसे अनुभव होती हैं। और प्राणायाम के द्वारा हमारा जो हमारा मानसिक तनाव इत्यादि है वो भी दूर होने लगती हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, यदि गाड़ी को भी हम सिर्फ चलाते ही रहेंगे, उसको हम ग्रीस नहीं करेंगे बराबर, कभी हम उसको साफ सफाई नहीं करेंगे, इंजन ऑयल डाउन नहीं करेंगे, तो उसमें वो जल्दी बिगड़ने लगती है गाड़ी। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है
0: जी जी,
1: उसी में भी समय समय पर जैसे गाड़ी स्वरूप उसको भी ग्रीस इत्यादि, माने ग्रीस लगाने यानी हमको योग के द्वारा हमको जो शरीर का जो कोशिकाएं है और शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम योग इत्यादि आवश्यकता होती है।
0: जी जी सर, ये बहुत सच बात है। तो सर, बढ़ती उम्र के साथ शरीर और मन दोनों में कई परिवर्तन आते हैं, तो योगा इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में किस तरह मदद करता है?
1: आजकल क्या है, भागदौड़ के जिंदगी में तो हम अपना जो शरीर है उसको हम अनदेखा करने लगी है।
0: बिल्कुल,
1: बढ़ती उम्र के साथ साथ मन में बहुत चिड़चिड़ापन, आलस्य आदि आने लगती है। यदि हर दिन योग, प्राणायाम और सुबह सुबह यदि हम वॉकिंग करते हैं तो हस्त पुष्ट और खुशी के साथ जीवन जीते हैं। और इस प्रकार से यदि जीवन में योग को अपनाते हैं तो हमारा जो जीवन में जो संतुलन है अपना शरीर मन के साथ साथ समाज में संतुलन बनाए रखती है।
0: जी सर, योगा हमारे लिए हमारे जो शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन में एक संतुलन बनाए रखता है। तो सर, अभी हमारे जो आपने बताया है कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज होती है और अभी का भागदौड़ वाली जिंदगी में, इसमें जो तनाव और चिंता आज हर उम्र के लोगों की समस्या बन चुकी है, क्या योगा और मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है?
1: जी जी, तो इसमें हम थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल,
1: तनाव और चिंता आज हर उम्र के लोगों के बीच समस्या बन चुके हैं। ध्यान योग करने से जो हमारा जो मानसिक तनाव है वो मुक्त होते हैं और हमारा जो शरीर में जो चिड़चिड़ापन है, आलस्य इत्यादि भी दूर होती है।
0: जी जी सर, जैसे हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये योगा हमारे लिए। अभी मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि हमारे शरीर में कई बीमारियां होती है उम्र के साथ साथ, वो बढ़ती है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अभी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इनके प्रबंधन में योगा कितना उपयोगी साबित हो सकता है?
1: यदि हम जैसे मधुमेह है, मधुमेह यानी डायबिटीज, उसके बाद उच्च रक्तचाप, मोटापा इत्यादि हमारा जो समाज में तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें योगा का माध्यम से इन सब को रोका जा सकता है।
0: जी,
1: जैसे जल्दी सोना, जल्दी उठना, उसके बाद यदि हम खान पान इत्यादि को ठीक करते हैं, उसके बाद हम रोज कुछ समय लगभग 30 मिनट के आसपास ऐसा योग करेंगे, उसके बाद वॉक करेंगे, तब हम देखेंगे कि इन सब हमारे अपने शरीर से धीरे धीरे वो ठीक होती है। ये हमारा अनुभव है। तो इसीलिए अपना जीवन शैली में, अपना जो डेली रूटीन है उसमें योग, ध्यान, संधि व्यायाम इत्यादि को बराबर रखना चाहिए।
0: जी जी सर, ये हो गया हमारी जो अंदरूनी बीमारियां होती है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब जो हमारे अंदर की बीमारी को हम योगा के थ्रू इसको बैलेंस कर सकते हैं सर।
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो अभी थोड़ा जानना चाहूंगी कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ज्वाइंट पेन और मोबिलिटी से जुड़ी समस्याएं वृद्धावस्था में आम है, ये बहुत कॉमन है, तो ऐसे लोगों के लिए आप कौन से योग अभ्यास या सावधानियां सुझाएंगे?
1: जोड़ों का दर्द आदि के लिए, जैसे जो वृद्ध होता है तो धीरे धीरे उन लोग में जोड़ों का दर्द इत्यादि होने लगती है। तो जैसे जो संधि व्यायाम है, वो संधि व्यायाम जो है वो जोरों का व्यायाम है, उसमें सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म एकदम बहुत हल्का इस प्रकार का व्यायाम है, और सूक्ष्म योग एक छोटा एकदम जो सूक्ष्म जो व्यायाम है, संधि व्यायाम है, मैंने पहले जो बताया, तो इस प्रकार का उन सब करने से हमारा जो जोरों का दर्द इत्यादि भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वैसे नहीं है कि वृद्ध अवस्था में हम चल फिर नहीं सकते तो हम योग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम योग करते वक्त कमर सीधे करना, उसके बाद कोई भी स्थिति में, ऐसे कुर्सी में हो या सुखासन या पद्मासन, कोई भी अपना जो स्थिति आपको ठीक लगे उसी स्थिति में करने से जोरों का दर्द इत्यादि ठीक होती है, ऐसा हमारा मानना है।
0: जी सर, तो ये हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए आसानी होगी इस व्यायाम को करने में।
1: जी सर,
0: तो अभी हमने जो डायबिटीज, जॉइंट पेन, ये सब को लेके काफी बात किया है, अभी मैं थोड़ी सी महिलाओं के बारे में बात करना चाहूंगी। सर, महिलाओं के स्वास्थ्य, खासकर मेनोपॉज और बढ़ती उम्र से जो जुड़ी चुनौतियां होती है, उनमें योगा किस तरह सहायक हो सकता है?
1: ये महिलाओं में जो रजोनिवृत्ति और बढ़ती उम्रों में जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार है। तो इस समय महिला लोगों को मानसिक तनाव और हार्मोन का थोड़ा सा संतुलन बिगड़ना, उसके बाद आदि एकदम चिंता इस प्रकार का होती है महिलाओं को
0: जी।
1: तो मैं उसमें उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो महिला है वो लोग इस समय शीतली प्राणायाम हो, भ्रमरी प्राणायाम हो इत्यादि अधिक मात्रा में करेंगे तो इससे बहुत सारे महिलाओं लोगों को लाभ होती है। और देखा गया है कि जो जो महिला एकदम हर दिन हर रोज बराबर मात्रा में योग करती हैं तो उन लोगों को इस प्रकार का जो महिलाओं का जो समस्या है वो नहीं होती है, ऐसा हमारा अनुभव है।
0: जी जी सर, ये महिला लिसनर्स है सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर तो मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगी कि अभी के जो डिजिटल युग हो चुका है इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे बड़े सब हर कोई फोन पे व्यस्त रहते हैं, तो डिजिटल युग में हम अधिक समय स्क्रीन के साथ ही बिताते हैं, इस बदलती जीवन शैली का प्रभाव काम करने में योग किस तरह मदद करता है?
1: जी वैसे डिजिटल युग में हर व्यक्ति लोग मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर में अधिक समय लगा के काम करती है तो इसमें डिजिटल युग में आंखों में बहुत अधिक प्रभाव पड़ने से जैसे मानसिक तनाव, मानसिक जो चिड़चिड़ापन है, आलस्य इत्यादि आने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें यदि हम थोड़ा सा योग की ओर जाएंगे जो सवेरे उठने के साथ साथ यदि हम सूरज उगते हुए यदि हम उसका दर्शन करेंगे, हम उसको देखेंगे धीरे धीरे सूरज उग रहा है और हम देख रहा है, तो इस प्रकार करने से हमारा जो

0: करने से हमारा चश्मा भी हट जाती है, ऐसा मानना है। उसके बाद ऐसे छोटा छोटा जो व्यायाम है कि हम अपना जो अंगूठा है उसको एकदम अपना जो सामना है सामना में ऐसा रख के पहले बाएं की ओर धीरे धीरे जाना, अपना जो सिर है उसको घुराना नहीं, जो अपना जो आके पुतलियां है उसी ही लेके जाना, फिर सामना लेके आना, फिर राइट साइड की ओर लेके आना, फिर लेफ्ट साइड के और बराबर इस प्रकार घुराना। तो इस प्रकार करने से भी हमारा जो आग का रोशनी है वो तेज होती है, ऐसा पूर्वजों का मानना है और हमने भी इस प्रकार से सीखा है।
1: जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये आप जो हमें बता रहे हैं योगा के बारे में, एक एक चीज हमारे किस बॉडी पार्ट के लिए कैसा अच्छा होगा आप बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। सर अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत के ओर जाने वाले हैं, तो एक दो प्रश्न रह गया है मेरे तरफ से आपके लिए कि सर जो लोग सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई है योगा शुरू करना मुश्किल होगा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैंने थोड़ा पहले इस विषय में थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाले थे
1: जी सर,
0: लेकिन फिर दोबारा बताना चाहूंगा श्रोताओं को। जैसे जो लोग सोचते हैं कि हम अभी हमारा उम्र हो गया, हम उठ नहीं सकता बेड से, चल नहीं फिर सकता, अभी हमारा ये काम नहीं है, ऐसा नहीं है। उम्र होने से भी यदि हम चल फिर नहीं सकता है तो हम बैठ के कोई भी अवस्था में बैठ सकता है, कुर्सी में बैठिए या फिर एक चटाई बिछाइए उसमें बैठे सीधा बैठे, लेकिन हाँ अपना जो कमर है और गर्दन है उसको सीधी रखनी है। हम छोटा छोटा जो सूक्ष्म क्रिया है वो हम कर सकता है, जैसे बैठ के जो प्राणायाम है, प्राणायाम में एकदम श्वास श्वास लेना छोड़ना, श्वास प्रश्वास अनुलोम विलोम है वो एकदम कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
1: जी जी,
0: तो प्राणायाम हो गया, उसके बाद अनुलोम विलोम, ये भी कोई भी उम्र का कर सकता है। क्या है, पहले बाएं नाक से श्वास लेना, दाहिना से छोड़ना, दाहिना से लेना, बाएं से छोड़ना, ये काम है, तो ये कोई भी उम्र का लोग कर सकता है। तो हमारा ये संदेश है कि जो पहले हमने बताया है कि कोई भी उम्र के लोग कर सकता है। उसके बाद ऐसे जो सूक्ष्म संधि व्यायाम है तो वो जो है अपना गर्दन को घुराना, हाथ उठाना, नमाना, पैर, उन सबको ही योग कहा जाता है। वो जो प्राणायाम इत्यादि, प्राणायाम है, ध्यान है, उसके बाद संधि व्यायाम है, यो सारा योगा का ही पार्ट है। तो हम यही जो उम्रदराज जो व्यक्ति है उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप सब थोड़ा बहुत जो सवेरे वॉक करने से भी अच्छी होती है अपना स्वास्थ्य के लिए।
1: जी जी,
0: अधिक पैदल चलिए, जितना हो सके पैदल चलना सवेरे, तो ये बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ध्यान तो कोई भी कर सकता है, कोई भी उम्र का लोग कर सकता है। ध्यान माने बैठना, आंखें बंद करना, मंत्र जप करना, ये नहीं। ध्यान में यानी अपना श्वास पर काबू पाना, श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना, यही ध्यान है। अपना जो श्वास में केंद्रित कर दिया वो है, वो ही ध्यान है।
1: जी सर, इस जो व्यायाम के बारे में आपने कहा है कि श्वास लेना श्वास छोड़ना, इसका कोई टाइमिंग क्या, इसको हम सवेरे करें या शाम को करें, कौन सा अच्छा टाइमिंग?
0: हाँ, खाली पेट में सवेरे, उससे पहले क्या है थोड़ा बहुत गुनगुना पानी पी सकता है।
1: जी सर, तो अभी हम अंत में अगर आपसे पूछे कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी सेहत के लिए रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट निकालनी हो तो आप उसके लिए किस प्रकार की योगा रूटीन की सलाह देना चाहेंगे?
0: जी, तो मैं हर वर्ग के लोग, इसमें युवा हो या फिर बुजुर्गों हो या छोटे बच्चे हो, सभी के लिए मैं उन लोगों को यह सलाह देना चाहूंगा, कम से कम अपना जो शरीर है उसके लिए कम से कम 30 मिनट, 24 घंटा में से 30 मिनट जरूर निकाले अपने सेहत के लिए। उसमें जैसे हो सके तो सबसे पहले आप सूक्ष्म संधि, मैंने बार बार बोला है कि सूक्ष्म संधि है वो धीरे धीरे अपना जोरों को हिलाना दुलाना, अपना पैर को खिलाना, अपने कमर को हिलाना, अपने गर्दन को हिलाना, उसमें सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा सा उछल कूद इत्यादि हो सके तो उछल कूद इस प्रकार। उसके बाद सूर्य नमस्कार, वो सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छे हैं, अगर संभव हो तो सूर्य नमस्कार इस प्रकार से ऐसे 15 मिनट निकल जाती है। उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे, जैसे अनुलोम विलोम हुआ, भस्त्रिका हुआ, नारी शुद्धि प्राणायाम इत्यादि, उससे शीतली प्राणायाम, और ये इस प्रकार का करने से 15 मिनट लगभग निकल जाती है। यानी प्राणायाम का जो जैसे अनुलोम विलोम वो 3 मिनट का हुआ, इस प्रकार का करने से लगभग 30 मिनट निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, अपना जो शरीर है वो तो सेहतमंद होगा ही, साथ साथ में आपको देखा देखी हमारा जो समाज है, देश है, सभी लोग निरोगी रहेंगे और हम सब स्वस्थ जीवन जिएंगे।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम के बारे में बातचीत करके। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में हमारे श्रोताओं को योगा डे के बारे में बताया है और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो पे आके इतनी सारी बातचीत की है, उसके लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को भी हमारे ओर से हार्दिक धन्यवाद
1: जी। तो दोस्तों, आज की इस रोचक और जानकारी से भरपूर

पूर्व चर्चा में हमने जाना कि योगा किस तरह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने ये भी समझा कि हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ लंबी उम्र पाना नहीं, बल्कि हर पड़ाव पर सक्रिय, स्वतंत्र और उत्साह से भरपूर जीवन जीना है, और इस दिशा में योगा एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम हो सकता है। मैं हमारे आज के विशेष अतिथि का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और अपने अनुभव और ज्ञान को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने अभी तक योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाया है तो आज से ही एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। याद रखिए, स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है। इसी संदेश के साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, मैं अंकिता आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साथ ही जुड़े रहिए आकाशवाणी हाफलों के साथ, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंटरनेशनल योगा डे पर आधारित एक कार्यक्रम, जिसके प्रस्तुतकर्ता थी अंकिता पॉल और अतिथि थे मिस्टर रोमन कंप्राय, योगा इंस्ट्रक्टर। चलिए अब हम सुनते हैं कुछ प्यारे फिल्मी नगमे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गाने। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत एलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की।

0: देखिए
1: आज गुजरात के भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित है। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योगा फॉर हेल्थी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चले योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
3: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
4: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्येन सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्मचेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार खिलौरे ले होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75%

0: से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मेट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज सम्पन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गो की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता के, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रिक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
5: NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले हॉर्मुज फिर बंद जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमेरिका को घेरा इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी 23 से फिर आगे बढ़ेगा दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार। लोकसत्व की सुर्खी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद। प्रतिमाओं में स्मृतियां हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
3: धन्यवाद रवि। और मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनाधिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे समाचार प्रभात। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम को और सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए देशभक्ति गीतों का एक कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अब आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए गए थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलांग केंद्र है।
1: हेलो हफलांग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलांग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलांग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलांग।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों, समय हो चला है कार्यक्रम सुरों की रंगोली सुनने का, और आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे विनोद राठौड़ की आवाज़ में उनके गाए हुए कुछ बेहतरीन गाने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर के गाए हुए कुछ बेहतरीन गाने, और इसी के साथ ही ये समाप्त होता है आज के लिए कार्यक्रम सुरों की रंगोली। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अब आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पूर्व आंचलिक बातोरी।

दोस्तों खेलमा कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे जॉन एलेजर लुंगो और उनके साथियों के गाए कुछ खेलमा भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब रांगखोल कार्यक्रम में सुनते हैं लल चौम से अक रांगखोल और उनके साथियों के गाए कुछ रांगखोल भक्ति गीत।

दोस्तों, रांगखोल कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे लल चौमसियाक रांगखोल और उनके साथियों के गाए कुछ रांगखोल भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब जयंती कार्यक्रम के तहत हम सुनते हैं कुछ जयंती भक्ति गीत। गायक कलाकार है मलम्बलंग प्रिंगे और उनके साथी।

0: दोस्तों ब्याते कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे LR कैस्परा नामपुई और उनके साथियों के गाए कुछ ब्याते आधुनिक गीत। और इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है इस सभा के लिए स्थानीय भाषाओं का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों अब समय हो चला है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आनंद लेने का विविध भारती के मनोरंजक कार्यक्रमों का। और इसी के साथ ही मुझे यानी मनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: Silence. Lights. Sound. Camera. Action.
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए अब सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप आपको जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद। तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था, अपने ही लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है। तुम ऐसे ही है बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी, ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें
1: उस बच्चे को।
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटोर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटोर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूँ कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है, अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है, चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा, और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती हैं, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं, तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि ये गाने बड़े कठिन है, यानी कि हाँ, डांस इसका जो है हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो हाँ, कठिन होते हैं, बिकॉज एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी एक फिल्म आपने की हुई है,
0: हाँ, रामलीला तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं। जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।
2: हे

0: वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने, तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है. तो जो उसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को, तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: बात की कि संजय लीला बंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आपने संजय लीला बंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूँगा कि जब आप संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना वो हमसे भी ज्यादा है, सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड, सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को खोली बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट वो 5 दिन की होती है, सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मजा नहीं आ रहा। ऐसे तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं, कुछ चेंज करें। सर नहीं नहीं तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आ रहा, दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम रातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने वाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माय फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक, इट वाज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक अलग ही एक यू नो एक
0: क्रेज।
1: हाँ, एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली, अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और उसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक लड़की, सो व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, सो ही थिंक्स, उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा
0: है। हाँ, जहाँ आपकी काम की सराहना भी हो रही है,
1: हाँ,
0: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब चुका है।
1: तो मजा आता है काम करने का, और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता, हमें मुझे पता ही नहीं चला कब।

0: सेकेंडली भाई एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है, तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। ही इज दैट डिटेल। फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो देयर वाज अ असिस्टेंट ओनली फॉर द धनुची कि तुम्हें धनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला धनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों वो धनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और वो फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा।

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम है,
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताऊं मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए, जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फ़ोन पे कि इस पर ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ, बहुत सारे चीज़ें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ,
0: एक तो बहुत ही ईजी है,
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। ईजी सवाल यह है कि एक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है।
0: नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं मेन वन। मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज़्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस, आई मीन अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट एट स्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो, और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे अगर वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड वाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं, मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है। एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन तीन चीज़ें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन इज लाइक दिस,
0: खोट तो होती है।
1: एग्जैक्टली, तो ये जो ब्लैक एंड वाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स मेक की एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। एंड आई डोंट लाइक दोज रोल्स, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज, बिकॉज देयर इज नोबडी लाइक दैट, इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है। अगर उनकी पिक्चरें जब मैं देखता हूँ तो मैं मतलब बोलता हूँ कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था। वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में, कि आप इतने इतने इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है, तो वो एक अलग लेवल का।
0: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है।
1: हाँ,
0: सवाल यह ऐसा है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद।
1: अच्छा।
0: और वो है कि शादी के बारे में।
1: देखिए, मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरी लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ बोलती है अगर एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ। और आल्सो कॉल माइसेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी के साथ, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज़ के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को यू नो इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, यू नो ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता. सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ. तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर सकता है. मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ. मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिकर ही नहीं करता. मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए. मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की यू नो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से.

0: अब एक और बात है
1: हाँ।
0: कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि हाँ। ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है
1: हाँ,
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है हाँ। उसी तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है
1: हाँ।
0: तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक एक जो आप कह रहे हैं, लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण हैं वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें जो मैंने सीखा है, समझा है, दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास सकना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हम एक खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे।

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूं कि आप फैलाएं यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मज़ा आया। और ऑल्सो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मेरे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज

0: मतलब नॉर्मल गाना है, जिस सिचुएशन का, जिस तरह से आपने गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो, तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है, धन्नो की आंखों में। वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता यूं के लिए।
1: ये ज़्यादा बेटर है।
0: उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से।
1: उसमें एक गिटार का जो पीस है डाडा डाडा डाडा डाडा डाडा,
0: वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
2: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग।
0: अच्छा।
2: तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से भी,
0: मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट, वही मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट होगा, और तो कुछ भी नहीं।
1: उसी के ऊपर
2: कैसा गा रहे थे हम,
1: क्या
2: चलिए गाना सुन के देखते हैं।

0: फिल्म किताब का जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना। मनीषा जी, आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिलकर के ये एल्बम बनाया था, दिल पड़ोसी है।
1: और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारी भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में

0: ही रहता है।
1: जी
0: इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं, इसको तो जितनी बार सुना जाए
1: बिल्कुल,
0: उतनी
1: इस
0: बार।
1: एल्बम के दो वॉल्यूम हैं,
0: जी
1: जितने भी गाने हैं हर गाना अलग है, हटके है, उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए, अलग है।
0: जी, तो आज कौन से वाले गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं?
1: जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है।
0: अच्छा।
1: बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं।
2: दिल पड़ोसी में आप गाना।
3: हाँ, मैं यही कहने वाली थी।
2: कौन सा गाना?
3: सातों बार बोले बंसी।
2: इसके बारे में तो गुलजार बताए।
4: सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना। तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले,
3: बोले
4: ना। ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: कैसे?
4: जितनी फूंक तन पे लगती है उतनी बोलती है, अंदर की बात नहीं बताती। सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं। जो चुप रहती है जिस बात पे वो नहीं बोलती। उसमें खूबसूरत बात सिर्फ यह है कि उसे परसोनिफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है, मुंह लगी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है, और वो सारी बात कहती है। एक जो उसका अपनापन है, जो अपने पास रखती है, वो चुप है, जो नहीं बोलती, वो सात सुरों के अलावा है। उसके सारी इलिटरेशन जितनी है वो बांसुरी के साथ परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: ये गाने में थोड़ा सा लयकारी भी किया था, सरगम भी किए थे, बड़ा अच्छा था मतलब।
3: और इसमें एक बहुत अच्छी थी कि बांसुरी साथ में बोल रही है और आवाज भी आ रही है।
4: हाँ।
3: तो समझ नहीं आता कि बंसरी बोल रही है कि राधा बोल रही है।
4: जी हाँ, बस वही वो उसमें पर्सोनिफिकेशन है सारी की सारी, जैसे फूंक फूंक के बोलती है।
3: जी।
4: अब वो फूंक से ही एक्चुअली बोलती है बांसुरी।

0: क्या बात है, प्रीत की पीड़ा जाने मुई, छाती छेद पड़े।
1: क्या बात है,
0: उठ उठ के फिर मुंह लगती है कान्हा संग लड़े। बांसुरी की इस बात को सुन करके मनीषा जी
1: कुछ और सुनने का मन रहता है क्या?
0: जी जी जी, जी। लगता है इसी अनुभूति के साथ रह जाएं।
1: जी हाँ, तो अब हम यहीं रह जाते हैं श्रोताओ, आपके साथ इन्हीं स्मृतियों में हम भी खोए हुए हैं और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इसी तरह के मधुर कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर हम लौटेंगे। अभी इस वक्त तो दीजिए अपनी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रिकर को इजाजत। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आपसे कुछ समय बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: साहिर लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
6: हर दिल जो प्यार करेगा वो

0: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई शंकर जय किशन ने। और श्रोताओं, इस गीत के पहले आपने संगम फिल्म का गीत सुना था, उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जय किशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म फर्ज का गीत आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ समय बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोताओं। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया बालम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहां पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली। रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत, कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान के रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ एक गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफ़र में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी, नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊँटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊँटों की सवारी की है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफ़र में, और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी तो आप ज़रूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थीं, और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा, ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी

भी जीता नहीं जा सका या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की इबारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है, तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गट्टे की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना, मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान, धोरा की धरती, अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है। और गीत को भी इन्होंने चुना है, तू चंदा मैं चांदनी पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार ज़रूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सब परिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। ख़ास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई। जैसलमेर में समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवाकर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन, भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं, और फिल्म

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी सेहरा, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था, जी हाँ आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौड़ी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मज़ा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाज़ार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाज़ार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चौमुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ यहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं, जी हाँ आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबीलिया नृत्य, भवाई नृत्य, राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य और दाल बाटी चूरमा, के सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है ये भी आप बता दीजिए, जिसमें, जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

गीत में श्रोताओ एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नज़र आती हैं हेमा मालिनी श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफ़र जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई, रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मोरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हों तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें, और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा, जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफ़र में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है, महिलाएं आज भी हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति कितनी

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोताओं, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो ख़ास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ ख़रीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें यह नज़ारा देखने का मौका हर रोज़ मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप ज़रूर लिखिए हमें श्रोता। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं, और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन ज़रूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती हैं लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज

कैफी आजमी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैनु पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से जो सिमी ग्रेवाल और सखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छत्रियां स्मारकी गुंबद मौजूद हैं, हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छत्री के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छत्रियां जो हैं वो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। श्रोताओं आप इसके बारे में भी ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत बड़ी छत्री है और राजस्थान की सबसे बड़ी छत्रियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता का ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है, ख़ासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आप को बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियाँ हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियाँ हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नज़र आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर ज़िले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाज़ार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाज़ार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाज़ार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और उसके तुरंत बाद दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही।

0: gathered in Riyadh yesterday to celebrate Yoga Day, highlighting the growing popularity of yoga in Saudi Arabia and its role in promoting health and family and well-being. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak, and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying, and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: Bharat aaj apne pure maritime ecosystem ko sashakt bana raha hai. Isliye aaj Bharat apne bandargahon ka aadhunikaran kar raha hai. Nayi kshamta tayar kar raha hai. नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है.
0: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers. But today, India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace. He says special steps are being taken to enhance domestic defense production capacity.
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था. आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है.
0: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download News on AIR app. National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is currently underway at over 5,000 centres across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates amid tight security. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. The NTA has said that student-friendly facilities are being provided at centres, including drinking water, ORS, ambulances and shaded waiting areas for parents. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan is assured that all necessary arrangements were already made for the smooth conduct of the exam. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Madhya Pradesh Governor and Chancellor Mangubhai Patel, Chief Minister Dr. Mohan Yadav and Higher Education Minister Inder Singh Parmar were also present at the ceremony. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
2: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक हुए. सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे. इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है. इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें.
0: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf, has named Binab 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated or scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation's observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
5: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
6: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
3: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
7: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
3: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
8: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
3: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
8: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्युएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
3: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
9: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी

0: बेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांतिवार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इस गीत के लिए शहदुल शहल से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
1: जुडू।
2: यस सर।
1: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
2: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
1: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
2: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
1: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
2: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
1: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
2: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला, वाह बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग पेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलेस, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी, कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
2: सर, मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना, ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेस क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेस?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
5: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
5: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
5: जिनी पैराम्बा।
2: क्या करती हो?
5: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
5: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
2: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ। वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
2: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
5: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
2: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
5: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
5: जी, मेरी?
0: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
2: प्लीज मिसेस मोलेस, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
5: आप कहना क्या चाहते हैं?
2: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
0: नहीं, वो क्यों जाएगी?
2: ओहो डरने की कोई बात नहीं है।
5: मैं कहां जाऊंगी?
4: मेरे साथ?
0: नहीं,
3: सर मैं ये कह रहा
2: था। ओ जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, हाँ देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
0: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी तुम अंदर जाओ।
2: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
4: सर मैं कह रहा था कि
2: जिडू, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
5: नहीं,
2: इट्स माय ऑर्डर।
5: मौसी, नहीं, छोड़ दो मुझे।
2: चला, चला, चला।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओं के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेज?
0: कौन? ओह नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाइज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं?
1: मिस्टर मुलाय, आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी
1: पेंच।
0: ये जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तुम कैसे हो पेंच?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: पेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं। पेंच,
0: इसे इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए कहिए, क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जिनी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जिनी,
1: मुझे बचाओ।
0: जिनी,
1: बेंच,
0: जिनी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या का कसूर है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसे क्यों लेकर आए हैं बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए हैं, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर मोलाइन, आपकी वजह से,
0: सिर्फ
2: आप ही की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन,

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेस, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेस?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेस, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद, आपको और कोई जरूरी बात ना करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की माँ ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सज़ा को माफ़ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच, कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा, मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: Bence be ayu bence. Bence bence bence. Aplog mere bench ko sirf ek baar dekhne do. Sirf ek baar dekhne do.
1: Hame afsos hai Mrs. Mulay. सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश भर है।
0: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी।
1: सचमुच मैं बहुत दुखी। लाश देने का ऑर्डर नहीं है।
0: ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है। उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
1: Really? We are sorry.
0: बेंजी अपनी कविता की कॉपियां भी तू लेता जा बेंजी, ये सारी कॉपियां लेता जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
5: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
6: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
5: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वांस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। भारतीय क्रिकेट

0: कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई को इंग्लैंड के एस्बेस्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: कहा जाता है जिसे, तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, वहाँ पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो।
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूँगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी। और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई, इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया,
1: वेरी गुड।
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरे मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, मतलब विशेषता मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज़ है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है।
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से
1: कितनी
0: है।
1: सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहां सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहां वो उनके रास्ते एक साथ हुए। कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहां ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला सांब जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज़्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी,
1: पहला कदम उनकी
0: पहला
1: तरफ से नहीं
0: कदम
1: आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी ज़रूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहाँ ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचा कर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल
0: ओके
1: हाँ मतलब उतना सा, खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है,
0: हाँ,
1: ठीक
0: सवाल
1: है।
0: आता है कि ये आखिर
1: हाँ
0: क्या है
1: क्या
0: ये?
1: है, राइट। श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहाँ पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियाँ पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
0: वाह,
1: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह,
1: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी
0: वाह,
1: ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है, और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही, ठीक है, बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
0: वाह, क्या प्रयोग।
1: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत

0: रस रखते थे, वो
1: बिल्कुल.
0: निर्देशक भी थे, राइट. सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एका राजा जी, ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे. इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है, कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है,
1: कामयाबी.
0: काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था. तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23, 24, मतलब ज़्यादा. उस समय उन्होंने काफ़ी सारे उस पर INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए. उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज़्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते. ऐसे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है. तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफ़ी सारी एक्सपोज हुई थी. इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
1: और वो पापा, भी पापा के निर्देशन में.
0: एग्जैक्टली. तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट दोनों चीज़ें हुई थी. उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान. कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय. और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें. छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है.
1: हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है.
0: करेक्ट करेक्ट. तो ये प्ले था. उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखर एका राजा जी. तो बखर एका राजा जी ये जो प्ले था इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था. पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था. तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूँगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूँगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट. तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी. एक प्ले तो था छू मंतर जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेर्डे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था.
1: गजब.
0: इट वाज हिज लॉन्च. तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को. और एक लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसा कलाकार आया. पापा थे, लक्ष्मीकांत बेर्डे थे, तो इट वाज पिक्ड अप लाइक हाउ. उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे. और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले. और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले. मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी. तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो. तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की.
1: वाह.
0: ओके. और फिर उसके बाद तो इट इज़ जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है. उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफ़ी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए. तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैंड्स अप का ये एक मज़ेदार किस्सा है. उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी. तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के. तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था. आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी. तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था. और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में.
1: हाँ जी.
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके. और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस. और
1: क्या प्यारी बात है. वाह. यहां भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर.
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं.
1: वाह वाह वाह. क्या बात क्या बात क्या बात. सुनते हैं ये गाना.

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज़ की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था। जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो,
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे,
0: किस
1: तो
0: इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने तो, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो इसलिए उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और 2 साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात 1 हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज़ अ गाइड, ही वॉज़ अ फ्रेंड, ही वॉज़ अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और 1 मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था
0: आर्टिस्ट
1: कलाकारों
0: का।
1: के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहाँ पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी ज़िंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: हाँ, उसकी बात आगे
1: उसकी
0: करेंगे।
1: आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
0: बिल्कुल
1: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो। तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।

0: एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
1: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी कैंप्स बने हुए हैं, राइट?
0: बिल्कुल
1: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी ज़ात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे
1: लिस्ट
0: साबित किया जा सकता
1: सही
0: है।
1: बात
0: उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
1: राइट
0: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
1: नहीं थी
0: तो
1: तो
0: पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
1: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
0: जी
1: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे, तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त। जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफ़ी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है। हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
0: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए।
1: हाँ
0: और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है,
1: हाँ हाँ
0: वो
1: हाँ
0: क्यों है?
1: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून

0: मैं
1: कसर रह गई
0: जो
1: है।
0: कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
1: Yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। हाँ एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके okay,
0: हाँ,
1: क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मज़ा आया था। इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं।
0: हाँ?
1: और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
0: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी याद।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की पहली सभा यहीं पे समाप्त होती है। पर आपसे फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। इस समय शाम के ठीक 6 बजे। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज के दूसरी सभा। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखाओं के बारे में जानकारियाँ दे देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम के 6:05 का समय रहेगा मार कार्यक्रम का। आज आप सुन पाएंगे कुछ मार आधुनिक गीत। गायक कलाकार होंगे राल श्यम थंग वांगकोल और उनके साथियों का आवाज में। जेमे कार्यक्रम का समय रहेगा 6:25 पर। आज अब सुनने जे विदेवे न्यूमे और उनके साथी के आवाज में कुछ जेमे भक्ति गीत।

शाम के 6:45 पर आकाशवाणी को गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे सेंडर आंचलिक बातुरी। श्रोताओं, स्थानीय गीतों के कार्यक्रम को जारी रखते हुए 7 बजे सुने डिमासा कार्यक्रम। आज आप सुन पाएंगे कुछ डिमासा आधुनिक गीत। गा कलाकार होंगे प्रदीप हापलुंगबार और उनके साथियों को आवाज में। 7:10 पर सुने विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, कुकी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:40 पर, 7:45 पर आज आप सुन पाएंगे कुछ कुकी पारंपरिक गीत। गायक कलाकार होंगे लेनी लोजम और उनके साथी को आज में 8 बजे सुनिए शुरू कर रंगोली कार्यक्रम।

स्वतः 8:30 बजे का समय रहेगा स्पोर्ट्स राउंडअप का। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएंगे समाचार संध्या। 9 बजे सुनिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलोंग यानी कि फोन इन प्रोग्राम, और सभा का अंत में रात 9:30 पर सुनिए हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं, ये थे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा से जुड़े जानकारियां।

ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोता उस समय उचला स्थानीय गीतों कार्यक्रम का। आइए सबसे पहले सुनते हैं मार कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ मार आधुनिक गीत। आवाज है रालस्यम थंग वांगकोल और उनके साथियों की आवाज में ही।

श्रोताओ, राल सेमथंग भंकोल और उनके साथियों के गाए इसी आधुनिक गीतों की साथी मार्ग गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। यही आकाशवाणी के हफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं जेमे कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ जेमे भक्ति गीत। आवाज है जेवी दैबे न्यूमे और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोताओ, जेबी देबे न्यूमे और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीतों के साथ ही जेमे गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र। थोड़ी ही देर में सुनते हैं असमिया में शानदार आंचलिक बातुरी।

श्रोताओं, प्रदीप हफलोंगबार के गाए इसी आधुनिक गीतों के साथ ही डिमासा गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी देर में विशेष बी लिंग्वल कार्यक्रम। थीम है वेन्ना जीवन।

0: कार्यक्रमों में भी बहुत बातें करते हैं,
1: बिल्कुल
0: उससे जुड़ना है और बाकी किसानों को भी प्रेरित करना है कि वो भी, क्योंकि जो उर्वरक होता है उसमें जो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के लिए उन्होंने मना किया

0: कि भाई वैसा उर्वरक जो अपनी खेतों में नहीं डालना, क्योंकि उससे नुकसान, फायदा तो होता है लेकिन उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है।
1: और भाई देखिए, इस समय खरीफ फसलों की जो बुआई की तैयारी भी चल रही है,
0: हाँ
1: तो कुछ क्षेत्रों में जो प्री मानसून बारिश भी हुई है, लेकिन देखिए मानसून की अभी इंतजार है, और उत्तर भारत और मध्य भारत में मानसून के जो आने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो देखिए, मिट्टी में पर्याप्त नमी कम से कम 4 से 6 इंच होने पर ही बुआई करें, और दूसरा भाई बीज उपचार अवश्य करें, जहां से भी आप बीज लें उपचारित बीज लें, अगर बीज उपचारित ना हो तो भाई बीज को उपचारित अवश्य करें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि भाई देखिए, अचानक कई बार बारिश तेज हो जाती है, तो ऐसे में खेत में भाई जो आपकी फसल के हिसाब से जल निकासी का भी प्रबंध करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: और सिंचाई और नमी प्रबंधन जिन क्षेत्रों में बारिश में गैप हो या तापमान अधिक हो, वहां उपलब्ध पानी से हल्की सिंचाई करें या नमी बनाए रखने के लिए जैविक मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: फसल का चुनाव भी भाई देखिए, अपने क्षेत्र की कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह के अनुसार कम अवधि वाले उन्नत किस्मों का चयन करें तो अच्छे रहेगा।
0: बिल्कुल। और मानसून के दिनों में खेतों में फसलों के साथ साथ खरपतवार जो होते हैं, फालतू घास भी बहुत तेजी से उगने लगती है, और ये घास जो है मुख्य फसल के हिस्से को खाद, पानी और धूप सोख लेती है, जिससे फसल कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद खेत की अच्छे से निराई गुड़ाई करके कचरा जो है उसका निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा हवा में नमी और गर्मी के कारण इस मौसम में फसलों पर कीड़ों और बीमारियों का हमला भी बहुत जल्दी होता है। किसानों को नियमित रूप से अपने खेतों को मुआयना जो है करते रहना चाहिए। अगर पत्तियों में कीड़े या कोई बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर नीम के तेल या किसी सही कीटनाशक दवा का छिड़काव जो है करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, इस तरह से भाई देखिए, छोटे छोटे बातों का आप ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे भरपूर उत्पादन। और हेमंत भाई, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि कुछ और फरमाइश हमें भाइयों की मिली है,
0: जी,
1: तो अगले जो कलाकार हैं वो हैं भूलन त्यागी, और भूलन त्यागी से उपदेश सुनने के लिए फरमाइश हमें मिली है। ये पहली फरमाइश मिली है सुनैना पवन भोंडे और तनुजा की थिलोरा दयापुर से।
0: बिल्कुल, और अगली फरमाइश हमारे पास आई है रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, और ये फरमाइश हमारे पास आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, गांव लोहड़ा जिला बागपत से जगमोहन प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं नूर महल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
0: एक और फरमाइश हम तक आई है करावल नगर दिल्ली से श्री रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: ये अगली फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है बिहार डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, बेगम शबनम और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है ग्राम पाजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चांसली और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पहले से उत्तर प्रदेश से, उसको भेजने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा।
0: गांव शेरड़ा जिला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश आई है मिंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। डुमराव बिहार से फरमाइश मिली है डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: और अगली फरमाइश हमारे पास आई है ढाणा नरसाना भिवानी से, ये फरमाइश आई है जगदीश चांडालिया, राजवीर चांडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से, ये फरमाइश आई है तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, क्षमा, शिवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की।
0: मुंगी बैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगड़कर और परमेश्वर की फरमाइश हम तक आई है।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सुक्रांति चौहान और उत्कृष्ट चौहान।
0: चौधरीवास हिसार से फरमाइश आई है हमारे पास प्रियांशी और केशव की, और सुनना चाहते हैं भूलन त्यागी को।
1: और साथ ही भैया लिखते हैं कि आपने जो रागनी सुनवाई ये उसकी तारीफ करते हैं कि वो अच्छी रागनी थी। और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, ये मिली है रावताखेड़ जिला हिसार हरियाणा से सियाराम भादू सुशीला और रोबिन की तरफ से।
0: अगली फरमाइश रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की फरमाइश आई है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली गांव हांडीखेड़ा जिला सरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा की।
0: संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की भी फरमाइश हम तक आई है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जमानिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश गांव नालोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश की फरमाइश हम तक आई है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश हम तक आई है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अब सुनते हैं इन सब फरमाइश करताओं की
1: भूलन त्यागी से ये उपदेश।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना बुलंद त्यागी से। और देखिए भाई, बदलाव प्रकृति का नियम है।
1: बिल्कुल,
0: सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये मौसम बदलते रहते हैं। और भाई देखिए, तपती गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो हम सबके मन को खूब भाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बरसात के मौसम में भाई यदि सावधानी न बरती जाए तो जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको भी बता देंगे, भाई बरसात के मौसम में पशुओं में कई तरह के रोग व बीमारियां हो जाती हैं। तो

0: इस मौसम में आप ने जो पशुओं का विशेष ध्यान रखना, उनके खान पान का विशेषकर बात करें तो देखिए उनके बिछावन को गीला ना होने दें, हमेशा साफ सुथरा बिछावन
1: रखें। बारिश के मौसम में होता यह है कि पानी भर जाता है और पानी से क्या होता है कीचड़ हो जाता है और कीचड़ से लगातार उसमें पानी जमा रहता है तो कहीं ना कहीं उनके पैरों में जो खुर होते हैं उनमें भी बीमारियां लग जाती।
0: बिल्कुल, खुरपका मुंहपका की बात करें तो वो बीमारी इस तरह से हो सकती है। और देखिए भाई, दूसरी बात यह कि पशुओं का जो खान पान का आपने विशेष ध्यान रखना है। यदि पशु का कोई भी आहार आप बदलते हैं तो उसे धीरे धीरे बदलें, ये नहीं कि भी एकदम से आपने पशु का आहार बदल दिया, चाहे वो हरे चारे की बात हो, सूखे चारे की बात हो। इसी तरह से देखिए भाई, जो पशुओं को आपने जो जल पिलाना है वो स्वच्छ जल पिलाना है। कई बार भाई सोचते हैं कि भाई चलो तालाब में, पोखर में, जोड़ में पशु को नहलाने जा रहे हैं, पशु वहीं पानी पी लेगा, तो भाई ऐसा ना करें, क्योंकि वो जो तालाब का और पोखर का जो पानी साफ नहीं होता उससे भाई पशुओं में कई तरह के रोग व बीमारियां होने के चांस रहते हैं।
1: और जो पशुओं के लिए जो हम चारा डालते हैं वो जगह के जो कोने वगैरह होते हैं जो सीमेंट से बनी हुई वो होते हैं, उनके हौदी टाइप बनाते हैं जिसमें क्या होता है पानी जमा रहता है, कोने में चारा जमा हो जाता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसका भी समय समय पर देखभाल करते रहेंगे और उसको साफ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पशुओं के लिए भी वो लाभकारी सिद्ध होता है।
0: और भाई देखिए, एक बात और यहाँ जो हम अपने कार्यक्रम में हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि भाई देखिए, जो बचाव आपने जरूर करना है, और बचाव के लिए भाई देखिए समय समय पर आप पशुओं को रोग रोधी टीके अवश्य लगवाएं। और ये टीके देखिए भाई सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलते हैं, और नहीं तो भाई गाँव में भी आप बहुत कम कीमत पर ये टीके पशुओं को लगवा सकते।
1: कहने का मतलब ये है कि जागरूक पूरी तरह से रहना है आपको अपने पशुओं के लिए, अपनी कृषि के लिए और स्वयं के लिए भी, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बातें की थी।
0: बिल्कुल। और अब भाई हेमंत भाई, बारी है कल के कार्यक्रमों के बारे में, कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जो जानकारी देंगे वो देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर क्राइम से बचाव, और साथ ही जानकारी देंगे भाई जैव उर्वरकों का प्रयोग और मिट्टी की उर्वरता के बारे में।
1: वही 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में बातचीत रहेगी, कार्बन फार्मिंग और मृदा में कार्बन सिंक बढ़ाना।
0: और हमेशा की तरह भाई देखिए 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का भी आप आनंद ले सकते हैं।
1: और साथ में बात करते हैं कल के मौसम की, अगले 24 घंटों में दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में मौसम के बदले हुए तेवर देखने को मिल सकते हैं। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिल सकती है।
0: तो देखिए भाई, मौसम का भी आपने ध्यान रखना है, पशुओं का भी और अपनी फसलों का भी और अपना भी। हाँ। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिवनंदनला, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। शाम के 7:30 हुए हैं और अब समय है गजल का। लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल।

0: बहुत ही खूबसूरत गजल सुनी अभी आपने चंदन दास की आवाज में।
1: श्रोताओ, ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय गीतों के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं कुकी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कुकी पारंपरिक गीत। आवाज है लेने लोजम और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोताओ, लई नई लोजेम और उनके साथियों के गाए इसी पारंपरिक गीतों की साथी कोकी गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुरों की रंगोली। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं हिंदी फिल्मी जगत के जाने माने गायक कलाकार विनोद राठौर के गाए कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे। तो आइए सुनते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हाफलोंग से शुरू कर रंगोली कार्यक्रम। आज सुन रहे हैं विनोद राठौर के कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्रोताओ, आइए सुनते हैं और कुछ नगमे।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही सुरंग रंगोली कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीप। आज के स्पोर्ट्स राउंड अप कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है मिस्टर आशीष नाथ। आप हैं एक क्रिकेट स्कोरर, यानी कि क्रिकेट में स्कोर लेखक के रूप में काम करते हैं। श्रोताओं, आपको बता दूं कि मिस्टर आशीष नाथ जो है दिमाहासाओ में जितने भी बड़े क्रिकेट मैच होते हैं उसमें ये स्कोरर का काम करते हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के हावलोंग स्टूडियो में।
1: शुक्रिया
0: जी।
1: सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हाफलोंग को
0: जी,
1: जिन्होंने मुझे इनवाइट किया।
0: अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका क्रिकेट मैच में स्कोरिंग का क्या एक्सपीरियंस है।
1: एक्सपीरियंस पहले मैं मैनुअल स्कोरिंग पे थोड़ा ध्यान दिया था, इसके बाद फिर एक ऑनलाइन स्कोरिंग ऐप आया जिसका नाम है क्रिक हीरोज ऐप, उससे मैं अभी स्कोरिंग कर रहा हूँ।
0: मतलब कि ऐप्स के जरिए? हाँ, आप
1: ऐप्स
0: कर
1: के
0: रहे हैं
1: जरिए।
0: अभी हाथ में लिखने का ये
1: लिखना भी पड़ता है, वो बस रिकॉर्ड्स रखने के लिए।
0: ओके ओके। तब आप अपनी स्कोरिंग एक्यूरेसी कैसे एंश्योर करते हैं?
1: वो कुछ प्रॉब्लम हो जाने से गेम रुकवाना पड़ता है और फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है उसी जगह से।
0: उसी जगह से? तो मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो पहले से वो फिर से शुरू करना पड़ता है?
1: नहीं, जहाँ खत्म हुआ वहाँ से स्टार्ट करने से हो जाता है।
0: अच्छा, ठीक है। और
1: फिर से कंटिन्यू कर पाता है।
0: जी। तो रन, विकेट, ये सब ओवर की गणना और रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं आप?
1: वो सब क्रिक हीरोज पे मिल जाता है, आपको जस्ट फोकस करना पड़ता है गेम पे। वही
0: जैसे कि आप एम्पायर भी है, प्लेयर्स भी है, सब।
1: हाँ, अंपायर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, हर बॉल को देखना पड़ता है सही तरीके से। अगर अंपायर को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछते हैं, और मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है तो उन लोगों को पूछता हूँ बस। वही
0: तो इसको कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपके अंपायर, प्लेयर्स और बाकी सबसे?
1: वो वॉकी टोकी है एक,
0: हाँ।
1: मतलब मैच में तो तीन ऑफिशियल रहते हैं ना, अंपायर दो और मैं एक स्कोरर, तो तीन वॉकी टॉकी रहता है बस, वही से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को।
0: उसके जरिए आप लोग कम्युनिकेट करते हैं ना? तो अंपायर या खिलाड़ियों के साथ स्कोरिंग संबंधी का विवादों में कैसे संभालते हैं?
1: उसको खिलाड़ियों को मतलब बोलता हूँ कि आप शांत रहिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम इसको सॉल्व करके देंगे आपको।
0: जी। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि फील्ड में ही झगड़ा हो गया ऐसे खिलाड़ियों के बीच?
1: ऐसा तो बहुत कम हुआ है, पर जब जब हुआ है मतलब हम एकदम ठंडे तरीके से उसको हैंडल करते हैं।
0: ठंडे तरीके से? तो अगर ये स्कोरिंग डिसीजन पर किसी की असहमति, लाइक डिसएग्रीमेंट अगर हो गया तो इसे कैसे, उसका हल कैसे निकालते हैं आप लोग?
1: उसको फिर से रिचेक करता मतलब करते हैं हम, तीन लोग मिला के, जो अंपायर दो है और मैं, तीन लोग मिलकर मतलब रीचेक करते हैं कहाँ पर मतलब गलती हुआ है, उसको रीचेक करके फिर से सही करते हैं।
0: यहाँ पे बहुत तकलीफ होता होगा ना कि जहाँ पे हम लोग टीवी में देखते हैं कि उसमें तो बहुत ज्यादा कैमरा होता है।
1: हाँ।
0: बॉल्स कितना होता है, ये सब बहुत तकलीफ होता होगा आप लोगों के लिए कि हाईलाइट नहीं है इसमें क्या हुआ था क्या
1: हाँ,
0: नहीं
1: हाँ।
0: हुआ था। तो आप लोग ऐसे करके कैसे मैनेज करते हो अगर कुछ गलती हुआ तो?
1: बस वही है कि ध्यान देना पड़ता है गेम पे, इधर उधर की बातें ना सुनकर सिर्फ गेम पे फोकस करना पड़ता है, बस वही बात है।
0: बस वही बात है, सिर्फ ध्यान ही देना पड़ता
1: ध्यान ही
0: है ना?
1: देना पड़ता है।
0: जी। तो लंबे मैचों में आप अपना ध्यान कैसे उसमें रखते हो? ऐसा होता है कि अगर लंबा मैच हो गया तो ध्यान भटक जाता है हमारा,
1: हाँ।
0: तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हो, खुद को कैसे उस टाइम में कैसे केंद्रित करते हो?
1: केंद्रित मतलब सामने एक पानी का बोतल रखता हूँ और मतलब आसपास में किसी को मतलब आने का अनुमति नहीं देता, क्योंकि वो मैच बहुत लंबा है ना, इसीलिए मुझे फोकस करना पड़ता है, स्पेशली इन फाइनल मैच। फाइनल मैचेस में बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है, हर एक बॉल, हर एक क्या बोलते हैं उसको,
0: ओवर,
1: ओवर, हर एक एक्शन पे ध्यान देना पड़ता है।
0: और अब तक आपने कितने मैचों में स्कोरर बने हैं?
1: गिनती में तो नहीं आ रहा है, पर 100-200 तो हो जाएगा।
0: 100-200? ये कितने सालों से आप कर रहे हैं ये?
1: दो हजार 15-16 से,
0: 15-16 से
1: अभी तक कर रहा हूँ।
0: आपको ये मैच का स्कोरर बनने का सपना था या फिर आपने ऐसे ही कर दिया एक बार और फिर ऐसे ही चलता रहा?
1: ये तो देखिए, बोल रहा हूँ आपको कि मेरा डीएसए में मतलब आगमन हुआ 2015-16 को।
0: जी
1: पहले मैं कमेंट्री करता था,
0: अच्छा।
1: उसके 2-3 साल बाद फिर मेरा मन स्कोरिंग पे आया। स्कोरिंग पे आने के बाद अभी तक मैं अभी स्कोरिंग कर रहा हूँ।
0: जी, तो आपको क्या अच्छा लगता है, कमेंटिंग या फिर स्कोरर अच्छा लगता है आपको अभी?
1: वैसे तो दोनों भी अच्छा लगता है, पर अभी तो ज्यादातर स्कोरिंग ही करता हूँ।
0: जी, तो आपने कुछ सीखा है इसमें, लाइक कुछ कोर्सेस तो नहीं होंगे इसको?
1: कोर्सेस हमने 2018 को यहाँ से गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया था सिलचर पे, एक सेमिनार था, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट के स्कोरर मतलब वहाँ पर इनवाइट किए गए थे, तो वहाँ गया और जाकर थोड़ा सेमिनार अटेंड किया। इसके बाद वो एक क्लास मतलब टेस्ट था, बस वो टेस्ट देकर आया।
0: तो कमेंटिंग करने के समय आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: कमेंटिंग देखो, कमेंट्री तो अपने आप आ जाता है, पता नहीं वो भगवान का देन है या फिर मैं खुद से करता हूँ पता नहीं, पर जब भी मैच देखता हूँ मैं मेरा अंदर से खुद से कमेंट्री आ जाता है।
0: क्या बोलना है,
1: क्या बोलना है, किस मतलब मोमेंट पर क्या बोलना है, सबको एक्साइटेड भी करना है ना, वही देख के मैं मतलब बोल देता हूँ।
0: अच्छा, तो आपने जब पहली बार स्कोरर का काम किया था तब आपने कुछ तकलीफ हुआ था, आपको कुछ तकलीफ हुआ था करने में?
1: हाँ ऑब्वियसली, ये सभी को हर कुछ ना कुछ काम में जब पहला करेगा सबको कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा भी बहुत मतलब एक दो प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्कोरर के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया, और इसके साथ मेरे कई साथी हैं यहाँ पर जो मुझे हेल्प करते हैं।
0: तो इस स्कोरर के काम ही बोलेंगे, स्कोरर के काम के लिए आपको पैसे दिया जाता है या फिर अपने आप?
1: नहीं, वो मैच
0: भी
1: है।
0: मैच भी होता
1: हाँ,
0: है
1: मैच
0: आपका?
1: भी होता है, आपको पर डे भी होता है पर मैच भी होता है,
0: मतलब मैच का हिसाब से होता है।
1: हाँ।
0: अगर एक टूर्नामेंट एक महीने तक चल गया
1: हाँ।
0: तो वो आपको पर डे के हिसाब से या फिर वो टूर्नामेंट के हिसाब से आपको देंगे?
1: वो मैच के हिसाब से, मैच के हिसाब से। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, एक मैच तो अगर 40 ओवर्स का मैच है तो एक दिन चला जाता है ना, तो अगर T20 होता है तो 20 ओवर्स का गेम है तो एक दिन में 2 मैच, तो वो 2 मैच का हिसाब से मतलब पैसा दिया जाता है, बस वही।
0: अच्छा ठीक है, तो कभी टेस्ट मैच हुआ है दिमासाओ में?
1: टेस्ट मैच तो अभी तक तो हुआ नहीं।
0: तब सबसे ज्यादा ओवर कौन सा टूर्नामेंट में खेला गया है?
1: वो अभी चल रहा है जो आसाम प्रीमियर लीग, आसाम प्रीमियर क्लब चैंपियनशिप, अभी 7वां संस्करण खत्म हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपका 8 आसाम प्रीमियर लीग आएगा, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट चैंपियन को 1 लाख दिया जाता है।
0: ओके, तो ये जो स्कोरर होता है ये आप अपने करियर बना सकते हैं?
1: अगर मतलब मन है हो तो करियर बना सकता है, पर मन नहीं है तो नहीं बन सकता है, बस।
0: तो आपका क्या ख्याल है, आप यही करना चाहते हैं या फिर दूसरा काम भी करना चाहते हैं?
1: देखिए इंसान का मन तो हमेशा
0: बदलते रहता है,
1: बदलता ही रहता है, तो एक से बढ़कर एक हर आदमी चाहता है
0: जी,
1: वही है।
0: तो आपका मतलब है इसमें इतना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ हमारे यहाँ पे? हाँ, अगर दूसरी जगह भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन
1: हाँ,
0: हमारे दिमाग में जहाँ पे हम स्कोप हमारा स्कोप है वो थोड़ा छोटा हो गया।
1: हाँ,
0: तो आपने दिमाग में तो किया है, लेकिन दिमाग के बाहर कभी किया है ये स्कोरर का काम?
1: नहीं, दिमाग के बाहर मुझे हम अभी तक कोई इनवाइट नहीं दिया, मतलब नहीं मिला, तो इसलिए नहीं गया।
0: आशा करते हैं कि
1: आगे
0: आपको मिल जाए।
1: मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया, जैसे कि मायबंग गया, फिर लांगटिंग गया, वही डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया है मैंने।
0: तो आप कैसे लॉस, जो क्रिकेट मैच में कुछ कानून तो होते होंगे, कानून को एक स्कोरिंग से रिलेटेड क्या क्या होता है?
1: सिग्नल को अच्छी तरीके से देखना, अंपायर्स का सिग्नल, वाइड, नो, एक्स्ट्रा, बाइस, वो सब वगैरह सब देखना पड़ता है।
0: मतलब आप वही का कैमरामैन जैसे है, आंख भी खोलना पड़ता है,
1: कान
0: भी, सब कुछ खोलना पड़ता है, ध्यान ना भटके। अगर एक बार ध्यान भटक गया तो खत्म हो गया। अगर मैच के बीच में हमारे यहाँ तो स्टेडियम तो नहीं है, तो अगर बारिश हुआ या फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया, तो उस समय आप लोग कैसे हैंडल करते हैं ये?
1: बारिश अगर आता है तो उस मैच को वही रोकना पड़ता है, जहाँ मैच खत्म हुआ नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे में तो बारिश रुकेगा या नहीं रुकेगा ये तो भगवान के ऊपर है। तो नेक्स्ट डे को हम रिज्यूम करते हैं उस मैच को।
0: जैसे कि आपने बताया कि आजकल ये एप्स होता है,
1: हाँ,
0: तो उस एप्स को ऑन द स्पॉट आप लोग करते हैं?
1: हाँ, ऑन द स्पॉट करते हैं,
0: ऑन द स्पॉट करते हैं। उसके बाद अगर कुछ गलती हुआ
1: हाँ,
0: तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं?
1: हाँ,
0: आप
1: करेक्ट
0: लोग
1: कर सकते हैं
0: जी,
1: उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए लेकिन करेक्ट हो जाता है।
0: जी, बहुत ही अच्छा, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें स्कोरर के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं थी जो आपने हमें बताया। तो आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा हमारे आज के गेस्ट से। आपका हम फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि आपने बहुत सी एक्सपीरियंस शेयर किए और बहुत कुछ बताया। आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही पसंद आया ये कार्यक्रम। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें यहीं पे समेटना पड़ेगा। यूं ही देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार, सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए थोड़ी देर में सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल

0: संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।

0: इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओ, अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे समाचार संध्या। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है।

0: आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: दोस्तों आइए अब सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलॉन्ग।

0: नमस्कार दोस्तों, आज दिन है रविवार। हेलो हाफ लॉन्ग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज की होस्ट आपकी दोस्त रिनी। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हाफ लॉन्ग।
1: हाँ जी मैम, मैं गुवाहाटी से संजय वेडिया बोल रहा हूँ।
0: जी संजय जी, बताइए।
1: हाँ जी मैम, मैं अपने एक गर्लफ्रेंड के लिए, छोटी सी प्यारी सी मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए एक गाना मतलब बजाना चाहता हूँ आपके यहाँ से।
0: जी बिल्कुल बताइए।
1: मैं उनको तो मैं खत नहीं लिख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद पे, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा मैम।
0: जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश का ये गीत हम जरूर सुनवाएंगे आपकी गर्लफ्रेंड को। धन्यवाद।

0: नमस्कार, बताइए आपका नाम।
1: नीरज रबारी, गांव डेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से।
0: जी, गुजरात से आप बता रहे हैं। बोलिए, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनना है नवरंग फिल्म का,
0: जी
1: और गाने के बोल है तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, और गाया है आशा जी और मन्ना डे।
0: जी आइए, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग।
1: जय हिंद, जय भारत।
0: जय हिंद, जय भारत। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी। सुरेश
0: आपका नाम?
1: गगनेजा।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: गीत अगर जय हिंद जय भारत बोला है तो मेरा तो यही मानना है तो देशभक्ति का गीत सुना जाएगी।
0: जी बिल्कुल, देशभक्ति का कौन सा
1: और
0: गीत?
1: फिल्म है नया दौर और गीत है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों।
0: बिल्कुल, आपके पसंदीदा ये गीत, आइए चलिए सुनते हैं।

0: हेलो हाफ लॉन्ग
1: हेलो दीदी,
0: जी, बताइए कहाँ से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं हारागढ़ से दीदी।
0: आपका नाम
1: मेरा नाम इखलास दीदी।
0: जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: ये सोल्जर फिल्म है ना, सोल्जर फिल्म का जेकोनो गाना, एक कुमार सानू का गाना दिलिया बाल पब्बा जो दीदी, ये नयो नयो ये गाना देने आसे दीदी, ये गाना है
0: जी बिल्कुल, आइए चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग
1: क्या मैं हाफलोंग आकाशवाणी से बात कर रही हूँ?
0: जी जी बिल्कुल बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है?
1: मैं गुवाहाटी से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सेविना है।
0: जी सविना जी बताइए कैसे हैं आप?
1: बस बहुत गर्मी हो रही है गुवाहाटी में, और हाफलोंग का मौसम कैसा है?
0: हाफलोंग का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है, हम मजे कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तो मैं बेसिकली मैं हाफलोंग में रहती थी, तो मेरे कुछ दोस्त बने हैं वहाँ पे। गाना मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है।
0: जी बिल्कुल, और डेडिकेट करना चाहेंगे आप अपने दोस्तों को ये गीत, क्या आप नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ जी जरूर।
0: जी
1: तो ये अरिजीत तालुकदार, संजय वैद्य, देवर्षि दास, टेटे और किशोर।
0: ओके, आपकी फरमाइश का ये गीत, चलिए आइए सुनते हैं। धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग
1: हेलो मैम
0: जी, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या है आपका नाम?
1: जी मैम, मेरा नाम है किशोर। मैं बात कर रहा हूँ सिलचर से। मैम
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, मैं बहुत सही हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैम, मेरी जो होने वाली बीवी है, ठीक है, वो रहती है गुवाहाटी में। तो
0: जी
1: काफी टाइम से हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये मैं एक गाना उसको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल
1: तो गाने का नाम है अभी ना जाओ।
0: जी बिल्कुल, चलिए सुनते हैं आपके होने वाली वाइफ के लिए ये गीत।
1: जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम।
2: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: हेलो आफलोंग।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप
1: मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। फिल्म
0: जी? और कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे आप?
1: सुनना है नबीना,
0: गाने के बोल
1: गाने के बोलना पलमा, और पलमा गाना है
0: जी।
1: वही गाना सर मैम सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल, आइए चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग।
1: हेलो आफलोंग, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम जितेंद्र दास, मैं श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट संदिल से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हीरो मूवी का तो मेरा जानू है, ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: जी बिल्कुल, आइए चलिए आपकी फरमाइश का ये गाना आज सुनते हैं।

0: हेलो हाफलॉन्ग,
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है?
1: जी। मेरा नाम मोना दास है और हम सिलचर से बोल रहे हैं।
0: जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जिंदगी की तलाश में ये गाना सुनाइए, मौत के कितने पास आ गए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका नाम क्या है
1: डी आर नलवानी हूँ, चकबरा कैंप छत्तीसगढ़
0: जी? कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: से। गीत सुनूंगा आज मैं मुकद्दर का सिकंदर का। दिल तो है, दिल दिल का है तो बाबा क्या कीजिए।
0: जी, आपकी फरमाइश का आइए सुनते हैं ये गीत।

तो ये था इस हफ्ते के हेलो हाफलॉन्ग कार्यक्रम का आखिरी कॉल। अगले हफ्ते शनिवार और रविवार फिर से हम हाजिर रहेंगे आपके साथ हेलो हाफलॉन्ग की और एक कड़ी लेकर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 9435700596। आप अपने कॉल के जरिए आपके पसंद का गाना अपने दोस्तों को भी डेडिकेट कर सकते हैं। कॉल करने का समय रहेगा बुधवार के दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा हैंडल आकाशवाणी हाफलॉन्ग है। तो आज के लिए मुझे यानी रीनी को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। धन्यवाद।

0: तो अभी आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलोंग। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत की थी रीनी देव ने। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, गीत और संगीत के सफर को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत का पहला गीत सुनते हैं सागर फिल्म से, आवाज है लता जी की।

दोस्तों आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, ए आर रहमान और लता जी के गाए रंग दे बसंती फिल्म के ये गीत।

श्रोताओं, चित्त गीत की इस गीत के साथ ही आज के हमारे दूसरी सभा कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है, इस समय रात के ठीक 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, कल की पहली सभा में यानी कि सुबह के